0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदलित व ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कोई को प्रलोभन नगरी आपो सेवा हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सूची संपर्क राख्न सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदली सेवा ग्रहण महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्वांगणी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को लगी नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकूने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख्व अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईन गुनासो सुनने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोझे संपर्क राख् सकूने कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर दीदी आज भोलि मेरे श्रीमान के छिटो घर पर आने एक्ल बस् रुच दुब्राउे जानू पैला खूब पढ़ने मं अब हेने मन नौ पैला तो तस्त मं के दुख कर कमा को पैसा बैंक में अलि जमा करते थे अस्त घर को लगी कहीं सामान किन्नी निकालने गो पैसा नहीं सानो सानो कुरा में किसकिस मत कर घर बारे बिग्रने जस्त पो भईस लौ न दीदी समझाई दिखो यू तो नागौसो कोलकाता में देखने जस्त लक्ष नागौसो तो भाई के भाटी भन
1: तो दीदी साथी गांजा खाना जबरदस्ती करे मैं नाम भन्न सकिन खाए तेस पी बिस्तार बारी हो गए अभी तो लत लगे छाटन सकिन
0: गाड़ो सारो मैं कहीं ठा छ अब खुरुक्क हिस्सा तो छाने पर्च तिमी तो हम सहारा हो इसी बर्बाद होने काम करते समझ त हम आमा बुआ ने समाज में बनाने गए पीछे प्रतिष्ठा छुट्टे इसको संरक्षक तिमी
1: दीदी धन्यवाद अब मैं सब छाड़े एक असल नागरिक बनने प्रयास करने श्रीमती दुख दिया मेरे सब थोक परिवार मैं माफ कर
0: बारिशमा लज सृजना गरी दुबेचोटी तुलाउने वस्तु वा पदार्थ लागू पदार्थ वा लागू औषध हो विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागू पदार्थलाई स्वस्थ शरीरको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनी परिभाषित गरेको छ यस्ता पदार्थले बारिशको केन्द्रीय स्थायी प्रणालीमा प्रभाव पार्नुको साथै उसको भावना र सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँदछ त्यसैले लागू औषधको प्रयोग प्रसार प्रसार रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड दिनु स्वस्थ जीवन को सभ्य समाज निर्माणमा हाती बालो गर्नु लागू औषध बुक्का समाज निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलु खम्बु र सोलु एफएमको संयुक्त प्रयासमा जनहितमा जारी सन्देश

0: Raio Rádio News, todo é tempo.
1: Solo FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sound check. Solo FM studio time.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
4: प्रदेश

0: बोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. City FM. It's studio time.
2: It's 8 a.m. We have to go buzzword.
0: Time check को साथ ना New Star Digital Color Lab तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका पास सोलु कुंभू

जीवन बनी गए हो इतना छाई को उजालो के ही छू गए हो जीवन बनी गए हो इतना छाई को उजालो के ही छू गए हो मेरी उन्हीं झूल की रानी आए राखी रहो।

0: नेपाली सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उत्कृष्ट हुंडा को मिलन चेतना
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रवृि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का लगी उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भैर
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लगी अति उपयोगी
1: हमारा सेवा
2: ओखलढुंगा र खोटांग को दिक्कल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद कर एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दीने
1: ऑनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: ओखलढुंगा को लगी आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भिजन ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852988022 और 9842880300

0: Saiu rádio em sono, é tempo.
1: सोनू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: सन्चे सोनिया फिल्म स्टुडियो टाइम
3: अर्जुन मध्यान्हको 12 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई अफसेट प्रेस सोनू दुतु नगरपालिका 5 सोनू

0: 각으로 퍼지게 되어사이.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जुन गई सुचोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य क्रम में मथिलो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहता तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में नस्पात काटने गाई बस्तु चढ़ाने तथा आवत जावत करने संपूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपना इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में नजानुस आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखिदेश सुनील जुनबेशी उपभोक्ता समिति युनिहिंसाबाट बचन र बचाओ यौचन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका यौचन्य हिंसाको जोखिममा हुन सक्छन् हिंसा समिति असन्तोष साथीलाई परिचित नदीबाट जोसुकीबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौ बाल बालिकाको चालचलन बानी व्यवहार अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ त्यस्तो पाइने उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं बाल बालिकासँग नियमित सम्वाद पनि गरौं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: নাগরিক চাহিদা শক্তি সঞ্চালন অদলিতগ্রহে মহানুভাবরে যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে বাদ প্রবাহী সেবা প্রাপ্তিকে সহজকরণ লাগে নাগরিক সহায়তা কক্ষ সঞ্চালন করি উচ্চ কক্ষবাদ মুক্তিক প্রবাহরে প্রাপ্ত সেবা প্রাপ্তিকে লাগে নাগরিক সহায়তা কক্ষবা সম্পর্ক রাখ অনুরোধ করি সেবা প্রাপ্তিমা কক্ষিক প্রলোভনা নগরে আত্ম সেবা লিন হার্দিক অপিল করছেন সেবা প্রাপ্তিমা কোনো গ্রাস আইন গ্রাস কোনো অধিকার কারণে প্রমুখ সম্পর্ক রাখা
1: কর্তৃপক্ষ সরকার আঞ্চলিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয়ে বিরাজমান
2: तिमीलाई पनि बधाई छ अनि कलेज चाहिँ कहाँ पढ्ने भयो नि
3: मैले त काठमाडौँको चाबेल सरस्वती नगरमा रहेको रिलायन्स इन्टरनेशनल एकाडेमीमा पढ्ने निर्णय गरिसके अनि तिमी नि
2: म त कहाँ पढ्ने अन्यलमा छु भने
3: के अन्यलमा पढ्नु हो हामी कक्षा दशसम्म मिलेर पढियो अब पनि सँगै पढौँ न तिमी पनि रिलायन्समै भर्ना भए भइहाल्यो नि
2: अनि त्यहाँ चाहिँ कुन कुन विषय पढाइ हुँदो रहेछ
3: त्यहाँ त विज्ञान व्यवस्थापनका विभिन्न विषयहरू छानी छानी पढ्न पाइने रहेछ नि
2: हो र कुन कुन विषय पढाइँदो रहेछ त्यहाँ
3: त्यहाँ त विज्ञान अनि व्यवस्थापन अन्तर्गत बिजनेस स्टडीज होटल म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर साइन्स फाइनान्स जस्ता विषयहरू रोजी रोजी पढ्न पाइने रहेछ
2: ए ल उसो भए म पनि रिलायन्स नै जान्छु अनि त्यहाँको अन्य विशेषता चाहिँ के रहेछ नि
3: ल सुन देशभरका हजारौं माभी मध्ये टप फाइभ भित्र पर्न सफल दक्ष शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने उत्कृष्ट नतिजा सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार विषयगत अत्याधुनिक प्रयोगशाला अनि जिम्मेदार र उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था रहेछ रिलायन्स इन्टरनेशनल एकेडेमी सरस्वती नगर चाबहिल काठमाडौँ गोपीकृष्ण हलभन्दा 100 मिटर पूर्व सम्पर्क 01-4822-336 48-12-445
4: श्रोताबिन तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: 才华就你所路的天空
1: सोनू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
2: साउंड चेक सोनू एफएम स्टूडियो टाइम
3: 3 PM न्यूज को 3 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: प्रोलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: It's 4 p.m.
0: तथा बडामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 5 PM
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: right to your heart. Solo FM 101.2 MHz.
1: TWR Nepal Nesul Jo Margadarshan Radio La Prasidile Jai Masi. क्यों मोबाइल डाक्टरी शिंकिंगबांग दुप्पी पर लासंग निजी के त्यंदो प्लियामो के निदिनी लियामो के निद्वाबीन
2: नसे जेते वाते लाते जिले तमारे निचे तमा आरिंग कौन जैसे सोंगे धापुजी नुमदर्जी को लाएं नुमदर्जी का इंसुर कर लां जेते वाला ले हमें जरिये सिजाते रहने वाएं नसे धापुजी जमलें जे धापु करे डॉक्टर ना लोग ने धापुजी हाथ लगी जे ये मार्ग में जी सातों वो केली परची नुमदर्जी वाले जीनो तमा तिलादे रंदू हो तो नागम में जूनी मार्ग में तुए मग जर्दा पला गमा गमा ला खुनी दो बोचिनो तमा तिवाजे सी इंसने हा कोचु मुझी ढोगला तिलुंग दला थोड़ो में नो तमा तिलुंग दल रोला सेम्ये तमा कारणे सिवाजे पांच साल जी जीनो नेमले वे तुम्हें निमले एजाई जीवे मग जो बोला उतना क्या में मुझी मिश्रा लंबा तंग नहीं जाते मां फुलना छा वाजे कुंडल के मिश्रा दुपाती वां तंग नंगों जुबला हार की इजिया जीजा मिश्रा लंबा नहीं जो दोस्त जुबला जो जीजे तमा मौसा के तीन लाम चीनियों को सुनती है जी तंग में जो को नंबा लाम तंग फिर ये डांसा लाम बहुत से जीवे तमा तेरा मेरे मां जो बुला तंग न्यू मना ना कि ने मां जो बुला ये जीतेरे सुना जो अलमो ढाकी पर लाम अमल ले जीते और नो तमा छोड़े जी दीजिए को लाम और तंग ये तो जिन्नार की पर लाम लोग सुन जीवे ये तो कह क्या ने सुन दिन कर तंग ये थोड़ा बहुत दिनी यह थोड़ा वाय यह मनुष्य यह न ये भी साय सिनी छोड़ा जान लीजिए सिखाते जीवे जिके तंदर के देवद्रन ताम चुकुप थोड़ा ये कलर सिख दिए जिके सिखे समय तक भी कुछ रुप दे कहाँ इनसे सिन दिखी ग्लाम ताम दिशिन तमा दिदुम तरला तमा जिन्ना खुशी संग मुझे तो थोड़ा फुकुलता ये इनसिनी हाँ कोजे वे ये देख पंद्रह की मार्ग वितरण नो कहे की जी यो वसीलब सिखलाम नंबर औरते मुझम नो सिरस भी पंद्रह की थोड़ा विशिष्ट दुखे से हम नो की जो बड़ा की जी दिलाम जीने जो कुछ थमी है जीने ये मसीब थमी नो तमा दिशी की नो इन दो नए दांग दियो वसी की दासलाम जीने जो कुछ सिखी पंद्रह की मीन थानी जो मेरे पास तमा चंग बच्ची बोजी नो जीने जी मीन थको नंबर मुना नो सिरस भी लोग थे जी खड़े थे तला मारते जी कोसो सिसिन जो हम वो जमाना के लोग हर जल्ला शर की सिने ये जी मैं जीवे तो क्या नहीं मिलती ना कौन ये नींदा था तुम मारा ना तो क्या ये तीजी ये आप अच्छे नंगा सी मारे ना वो पला तीजी दिलाम चीनी उधर कम ना की पला तीजी तीजी दासला इन्हें ना सिने सिनो तमाम तेरे लिए शाह जी विचिकला तीजी कौन जो थोड़ा था तुम वो नंगा थोड़ा ना तयन दिसी मंदर की थोड़ा थोसीन ये तिवारा मार जो कुला घमला चंगले उतरा के ये जिन्दुम दर थाने नंबर कुदे पाऊं मुझे जिन्ना चीनी की घमला चीनी जाप की थोड़ा ना नार चीनी से नंबर नार ला हो तो मोटो लागासन के ये चीनो ये जेताम की मुला चंब की चीनी को ला कहाँ चला ना समझ रहे उतरा चीनी जिन्ना चीनी की कौन जो सी इंसिने न्यू थला छासे की खासे ताम दिवा नो छोड़ा ना समझ रहे पांच फिर दस दिन से दौड़ पड़ ला तुम्हें यू उनकी क्या कोनो तो हम मस्से यू खड़े ही लापा ये लोग उसे इस रियलिटी में जा रहे हो जो बोले मस्से यू खड़े लाखबालों मुझे भी है जिधे गोवरा नो तमत के पर खड़े लापा वो खड़े जो को तम ना वो जाने की धुकी दां छोड़ा दुखी लोग था लोग इनकी जो मन हो मुनसे की धुकी दां मुनसोसा लाखबाला ने जब तुम जाओ फिर ना छोए न ताना जय लोग वो तो ले वे वो बोले ने उधर तुम से लां कबला कहाँ के देवीन ये तो जुला तुम्हारा छेतुम सो जीवे तू क्या ने उधर ना मौसा लाया कि मुझे उतां तमाय ऐसे नहीं किसी लगने भले मर पवीन नो तू क्या ने ये वो सिया कोनो की तय आम लगी तू की माँ खाले जलो है तमाय तीजी इस दे ले लाम तीनों जोकुल सानो तू क्या ने तीजी मौसा लाम दी कोला सिजंते उतने की नो तमाय तीजी मौसा दीजी कोला लाम जमा जाने सिजनो तय की छह की लगपा गर्लों 怎么把机会机会怎么关键就来个两年机会机会怎么增加你的机会你的目的不够呢你去摩托车的话就对不啦你去别的了当年摩托车的话困难了怎么摩托车的话就没有呢怎么听你的话就啦其实哈伦怎么那么他的哈伦机摩托车的话就没有啦大家讲了怎么听你去关键就弄的啦我在你怎么关键就来个的机会毛就不了就弄哪个机会呢当然就弄啦你们的经济人吧他当时的没有在车里去做个不急下来又到统统这边全然大声的人帮助你找本来不过你们的如意你去怎么如意托你做你的信用别毛生个小姐你们的如意做你如意你也不如做你干净了了跟你讲了怎么你这里当主啊我等你国民的大名怎么你上了清单怎么我们也是可以想农村发病怎么这个你做了同时的饮食家庭农村的一地库了我都离离婚了发生事情起来是没有的也是个快乐的么多的家庭他对我了农村南部的地方了新闻为什么当你们今天他过去了我来想要你去我给你们的成绩我干了我给你们的多个人你给我来给你们的吧忙着给你们你给他世界开始拿什么感恩人生的那个地你拿什么东西都不了那钱拿什么的时候我不知道你们关键是过去的给你才能够等到我去了你等到他是两个家庭肯定是生前多个家庭我去了等到这些妈妈上去生了等到快乐不行了这些钱给他是了钱给了门的这个做不了在这就了不用哪个地方家呢那地门的地本来哪里门的做了根据位那天没有这门的力量等于说你也现在为其他资金在进现在他是人家收集的怎么不用门的力量了他要做了工商那天就进门的人能上那哪个呢怎么就变成这门的力行为一动了实际他是老头其中的基础啊下面是我阿姑你别一个呢咱们都讲一句一句关键一门的句啊你要出了对不呢你可找到他们呢咱们就一句一句看不啦那都不让你们去呢那上当呢现在就一句一句回来你有多个女的人别说完的句呢咱们都讲的都是两句一门的一句吧能在现在两个讲呢那都马都你无得了两个电影刚才你们去先才去就得了这些人你们门的一句本来你去人我感觉哪人穷得你要走了现在逃得不及过了那是我的那个门的一句你忙了我买的一句你忙了我不记得当地啊我们那个记录哪个地啊我们今天就在这记录我们去先地位我们能够看出来你要是能出了当地刚才你去先那就够了你你要买当地我们出去了你们再出来走开我们不能够记录怎么样嘛你们就完了全都穷了苦那你们都没出去了穷了就不当不能记录那么其他是呢穷了我们也不能记录但可是我们的力量白白的不能当我把记录不了我都我的这个眼睛说不了去了刚才进不出眼睛里我都没记录怎么去了去记录那是你们了那个人们也没了我把记录那人不能记得吗你要记有通知是你你要说了可是你们不记关键你怎么了笑那个地脸那什么大人为आरम दवा जाने तमाम उर्जी मौत के लागू जिंदगी तुम्हारे जिन एक सुखी से हो तो छोड़ा निर्ता मुंडी छोड़ा की मोबाइल की किताना बाय बाय लेने जन लोग की तमाम छोड़ा की किताना दे रहा सुवां तमाम शब्द जुआ चीनी चीज लालक बजनी नाते जुए तमाम सेम जुए जोश में सी कौन जो छोड़ा मुला जुना हुआ मार्किंग ये मोबाइल सकती तमाम काले चुनचुना कौन जो ये जो जुए लोग जो खोई की जाए लोग ने वासन से सेम तमाम खोई की मुला वासन से सेम तमाम चुनो ना खोई की लुंदर की या बो जुए चुन खोई की मिला शर्तन के ने दे जुए तमाम चुन जो जुए तमाम ती जुए छोड़ जो जुए मुझे ले मना सने नला ने जु जुए जिन्हें लिया बन निशिन जुए मिन्ने से दाखो खोई की लुंदर की या बो关键给买名的小张建议可能在这关键是哪位可能在这怎么能给那他给家那么多那可能怎么能让我的小张不买便宜位怎么在这来过来买新的机会怎么样去机会怎么在这来过来买新的机会 인 오늘 불친 워지스인 정말 나고 싶어 권력기 미디어인 정말 거기 닥더라 나빠 열지기네 미안 나고 예수 크리스람 나고 거래 권죠 정말 헛되네 주니 와시네 와전이 기이고 이 가상의 담임 호텔에 비해서 권력 주는 왜 정말 나고 거기 룸달 너의 연애 크루스 크룸람 염자의 미치리 나고 닥비 미치기 내리만 적음람 예수 크리스라 기이어 버지 정말 나고 내리 내리 아멘

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Sunshine. Sunny FM. Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोनू दुदुमा नगर पालिका 500 कुंभू

0: check. Surya FM in studio time.
1: It's 9 PM. Ratko Nobody.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।
3: प्रिय श्रोता अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपाल को प्रस्तुति कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्।